0: हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। ऊर्जा क्षेत्र में इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड द्वारा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम आन्या ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। राज्यपाल ने डॉ. आन्या को भारत सरकार के सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक नीति आयोग के नियुक्त पर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि वह समावेशी और जन केंद्रित नीतियों के माध्यम से देश तथा अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राज्यपाल ने कहा है कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, कम जनसंख्या और समुद्र सांस्कृतिक विविधता के कारण अरुणाचल प्रदेश की चुनौतियां विशिष्ट है। उन्होंने कहा कि मैदानी और अन्य राज्यों के लिए निर्धारित विकास मानकों को अरुणाचल जैसे पर्वतीय राज्यों पर समान रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड ने प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता एवं सम्मानित सामुदायिक नेता बेंगिया तोलुम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा है कि दिवंगत दूरदर्शी समाज सुधारक, समर्पित शिक्षाविद और अथक सांस्कृतिक योद्धा थे, जिन्होंने अपना जीवन समाज के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा है कि विभिन्न जनजातियों और समुदायों के बीच एकता और सौहार्द को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया तथा शांति और आपसी समझ के संदेशवाहक के रूप में भी योगदान दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश को चरण 3 में शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इस पुनरीक्षण कार्यक्रम को चल रही जनगणना गृह सूचीकरण प्रक्रिया के साथ समन्वित किया गया है, ताकि साझा क्षेत्र तंत्र का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किए जा सके। अरुणाचल प्रदेश में 12 मई 2026 तक कुल 8,87,607 मतदाताओं के सत्यापन के लिए 2,288 बूथ स्तरीय अधिकारी और 3,131 बूथ स्तरीय एजेंट इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा के तहत तैयारी, प्रशिक्षण और मुद्रण कार्य 5 जून से 14 जून तक कराए जाएंगे, जिसके बाद 15 जून से 14 जुलाई तक बूथ स्तरीय अधिकारियों तथा द्वार द्वार घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। TCL विभाग के सचिव वायोंग खिमहुन ने आज तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग विभाग के विभिन्न लाइन विभागों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलापूर्ति विभाग, वानी कृषि विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग सहित कई विभाग शामिल हुए। बैठक के दौरान संबंधित विभागों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से अपनी चल रही योजनाओं और परियोजनाओं की स्थिति प्रस्तुत की। TCL और के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों पर संचालित विकासात्मक गतिविधियों की प्रगति, क्रियान्वयन और प्रभाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। लोअर सियांग जिला प्रशासन 18 मई 2026 को लिकावाले स्थित सर्किट हाउस में जिला स्तरीय तेजस कार्यशाला का आयोजन करेगा। तेजस पहल का उद्देश्य गैर महानगरीय और वंचित क्षेत्रों में इच्छुक उम्मीदवार, स्टार्टअप्स, नवप्रवर्तकों और छात्रों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित एवं सहयोग प्रदान करना है। ये पहल भारत सरकार के वन्यजीव और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन, पुलिस तथा वन विभाग ने संयुक्त रूप से कल पासीघाट के 2 माइल स्थित पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान के पीछे लगभग 12 एकड़ क्षेत्र में उगे जंगली कैनाबिस सटाइवा यानी गांजे को नष्ट किया है। इस अभियान में पुलिसकर्मियों, वन अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के कर्मचारियों ने भाग लिया। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 15 जिलों वेस्ट कमिंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कमले, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, लोअर दिवांग वैली, लोहित, नामसाई, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani Itanagar, the news read by Apugapak. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE. The talks yielded a wide range of agreements.

फिल्म 72 आवर्स के गीत के साथ कार्यक्रम क्वामे तराने यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मासूम से। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है आरडी बर्मन ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है डीएचपीडी लहू से। आप है पासंग गोनपो नीमा दवा और संगे ड्रमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म चरणों की सौगंध से मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी व संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश की है वकीर से आप है कुंचो संगे संगे दर्जी और दर्जी गेसन।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म फूल और अंगार से कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाज में। शब्द रचना है रानी मलिक के व संगीत है अनु मलिक का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है लहो पैगंग से आप हैं श्रीमयांगचिन सिटिमयांगचिन पेमा टाशी नाको और तोंगचिन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म महबूब की मेहंदी से मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमीन दीप। और कालका से आप है शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

श्रोताओं आप सुन रहे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आंधी से। शब्द रचना है गुलजार की व संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है रिग्नी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्में गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्में गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 9 बजे न्यूज़ @9।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण 7 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में हरजिंदर कौर ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची।

0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशिया अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 राजपदक जीत करके ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही लड़के और लड़कियों के कुल मिलाकर पदकों की संख्या 17 रही।
1: भारतीय मुक्केबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा। आज खेले गए फाइनल मुकाबलों में 64 किलोग्राम वर्ग में राखी ने उज्बेकिस्तान की रुखशोन बोनू अहदोवा को और 57 किलोग्राम वर्ग में नव्या ने जापान की सारा कोनो को 4-0 से हरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। लड़कियों में ही 48 किलोग्राम वर्ग में खुशी चंद, 63 किलो वर्ग में दिया, 70 किलो वर्ग में हिमांशी, 75 किलोग्राम वर्ग में ज्योति, 80 किलोग्राम वर्ग में वंशिका और 80 किलोग्राम से अधिक वर्ग में गुरसीरत कौर ने रजत पदक जीता। लड़कों के वर्ग में एकमात्र फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी लक्ष्य फोगाट ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। ताशकंद में भारतीय मुक्केबाजों का ये कीर्तिमान अभियान भारतीय बॉक्सिंग इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हो गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: सचिन, भारतीय बॉक्सिंग का एक स्वर्णिम अध्याय कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों ने हर क्षेत्र में पदक जीते हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए कि विजेंद्र ने जो मशाल 2008 में जलाई थी
2: जी,
0: जिसको मैरीकॉम लंबे समय तक लेके चली, आज भारत के युवा खिलाड़ी अंडर 15 अंडर 17 वर्ग में उसको धारण करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं?
2: हाँ नहीं, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि क्योंकि देखिए ओलंपिक में पदक पहला उन्होंने दिलाया था, लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो डिंकू सिंह जैसे बॉक्सर भी थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत सफलताएं, एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आए थे, बहुत लंबे समय बाद वो जीते थे, कॉमनवेल्थ में भी अच्छा प्रदर्शन किया कुछ मुक्केबाजों ने लगातार, तो वहां से एक परंपरा कह सकते हैं कि, और ये पहले से चली आ रही है। कौर सिंह 1982 एशियाड में गोल्ड मेडल जीते थे, उससे पहले हवा सिंह हुआ करते थे, तो ये सब हरियाणा के ही ज्यादातर, डिंको को अगर हम छोड़ दें वो मणिपुरी थे, तो हरियाणा एक तरीके से नर्सरी बनी सकती बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि वहीं से ज्यादातर हमारे मुक्केबाज निकले हैं जो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छाप छोड़ी है। तो और इसके अलावा जब हरियाणा से निकलने लगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सफलताएं मिलने लगी तो बाकी राज्यों में भी उसका असर देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट में भी उस तरीके की चीजें देखने को मिली, तो लगातार जो है जैसे लवलीना वगैरह जहां से निकल के आई, असम से आए कोई, मणिपुर से बॉक्सर हैं, मैरी कॉम का आपने जिक्र किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि नई पौध से ही आगे हमें बड़े मंच पे जो है खिलाड़ी मिलेंगे, और अगर अंडर 15 में 27, अंडर 17 में 17 इस तरीके के पदकों का अगर जखीरा ला रहे हैं हमारे नवोदित नई पौद, और अभी अंडर 19 स्तर पे अब प्रतियोगिताएं होंगी, तो यही अच्छी चीज है, सकारात्मक, बहुत सकारात्मक है ये, क्योंकि यही तो आगे चल के ध्वजवाहक बनेंगे हमारे जो असली
0: जो हमारी कतारों के ध्वजवाहक बनते नजर आएंगे यही खिलाड़ी आने वाले समय में। और सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने वुशू के खेल में भी अपना शानदार दबदबा दिखाया है। भारतीय वुशू टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में 3रे स्थान पर रहा।
3: अपर्णा दहिया और शिवानी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने मकाओ में अपनी शानदार स्किल और काउंटर अटैक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एक यादगार अभियान का समापन किया। अपर्णा दहिया ने महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में वियतनाम की मौजूदा विश्व चैंपियन टीफुओंग को सीधे सेटों में हराकर ये कीर्तिमान अपने नाम किया। महिलाओं की 75 किलोग्राम वर्ग में शिवानी ने अपनी रूस की प्रतिद्वंदी के सामने सांडा कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या को 2 गुना कर दिया। अपर्णा और शिवानी ने पिछले वर्ष ब्राजील में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। पुरुषों की 48 किलोग्राम श्रेणी में कुशल कुमार ने रजत पदक हासिल किया। करीना और सागर दहिया ने 1-1 कांस्य पदक जीतकर चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की संख्या को 5 कर दिया। मकाओ में आयोजित इस प्रतियोगिता में 21 देशों और क्षेत्रों के कुल 110 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: सचिन, भारत ने 5 पदक जीते, 3 पदक भारत के लिए बेटियां लेकर आई। मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा शिवानी की, बीएसएफ में कांस्टेबल हैं
2: जी,
0: लास्ट ईयर सिल्वर जीती थी, अपर्णा भी सिल्वर जीती थी।

0: बार देखिए कि आप दोनों ने एक साथ पदक की चमक को बढ़ा दिया।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए अगर कोई अपने पदक का रंग बदलता है खिलाड़ी, तो ये एक बड़ी सफलता है। रजत से आप स्वर्ण पदक पे अपने उसको ला रहे हैं प्रदर्शन को। और अभी जिस तरीके से हम पहले 19 में प्रवीण कुमार थे, एक सांडा खिलाड़ी जिनको हम जानते थे कि वो पहले खिलाड़ी भारत के हैं जिन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अब लड़कियां भी उनके पद चिन्हों पे चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा। और ये बहुत कोई पुराना खेल भी नहीं है भारत के लिए वुशु, मात्र 3 दशक पहले इसकी यहाँ शुरुआत हुई। और शुरुआत में तो एसोसिएशन लखनऊ से ही इसकी चलती थी जहां तक मुझे याद है, हो सकता है कि ये तक थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उन लोग इस एसोसिएशन ने बहुत प्रयास किया भारत में इसकी जमे जाना। हालांकि अभी ओलंपिक खेल नहीं है शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: लेकिन जिस स्तर पे भी अभी खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और 5 पदक लाना लड़कियों द्वारा, सारे पदक जीतना, ये एक बड़ी उपलब्धि है
0: जी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 96 किलोग्राम का वजन उठा करके कांस्य पदक अपने नाम किया। तो आज कह सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने वजन उठाया भी है, वजन दिखाया भी है, और हर क्षेत्र में जहां पर भी बल प्रयोग हो सकता है भारत ने भरपूर मेडलों की संख्या बढ़ाई।
1: देखिए, इसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन चल ही रहा है। शुरुआत लड़कियों ने की, फिर कल का दिन एक पुरुष खिलाड़ी के नाम रहा, आज फिर हरजिंदर निकल के आई हैं मेडल विनर के तौर पे। और हरजिंदर का अभी पिछला रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने बर्मिंगम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो एक बड़ा कंपटीशन होता है चूंकि, तो उसमें वहां पे ब्रॉन्ज मेडल लाना एक बड़ी सफलता है। और पिछले साल ही उन्होंने अहमदाबाद 2025 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी मेडल जीता था। तो अपने प्रदर्शन को हालांकि अभी ब्रॉन्ज मेडल से ऊपर नहीं ले जा पा रही है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है कि 25 में भी जीता और 26 में भी जीत रही है, तो एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। क्योंकि भारोत्तोलकों के लिए बहुत चुनौतियां होती हैं, बड़ी अलग तरीके की। आपने देखा ही होगा कल भी जो अजीत जीते थे वो मात्र 1 किलोग्राम वर्ग से उन्होंने किसी खिलाड़ी को 4th नंबर पे छोड़ा था और ब्रॉन्ज मेडल पोडियम पे आने में। तो ये बड़ा बड़ा कठिन खेल है ये कि आप 1-1 किलो किस तरीके से अपने वजन को बढ़ाते हैं, और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है
0: जी। बिल्कुल, तो बहुत सारी इंजरीज के बीच में
1: बहुत मुश्किल खेल है ये
0: जी। बिल्कुल, और 1-1 किलो वजन बढ़ाने में लंबा समय लगता है, लंबी प्रैक्टिस लगती है, और कहीं आपका एज ग्रुप बदल गया तो फिर आपको नई चुनौतियां, नए सिरे से।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत चुनौतियां इस खेल में।
0: आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल मुंबई इंडियंस ने एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की।
2: धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में कल वापस जीत की पटरी पर लौटने की उम्मीद लिए पंजाब किंग्स का सामना हुआ प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस की टीम से। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने टीम के लिए 35 गेंद में सर्वाधिक 57 रन बनाए। अजमतुल्ला उमरजाई ने भी 17 गेंद में 38 रन का अहम योगदान दिया। MI की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ने शुरुआत से ही सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने 39 गेंद में टीम के लिए 61 रन जोड़े। रिकल्टन 23 गेंद में 48 रन और रोहित 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभालते हुए 33 गेंदों में शानदार 75 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं टीम के लिए बचा हुआ काम विल जैक्स की 10 गेंदों में 25 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी ने कर दिया। अजमतुल्ला उमरजाई ने पंजाब के लिए 2 विकेट भी लिए। सीजन के शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब की ये लगातार 5वीं हार है जिसने उसके लिए प्लेऑफ की दौड़ को थोड़ा और मुश्किल कर दिया है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: सचिन, जिस तरह की शुरुआत पंजाब की सीजन में हुई थी, फेवरेट्स थी, अभी भी काफी हद तक फेवरेट्स है, और इतनी फेवरेट्स है कि लगातार 5 मैच हारने के बाद भी 4th नंबर से कोई हिला नहीं पाया है, लेकिन क्या हो गया इस टीम की फॉर्म को?
1: देखिए, स्कोर तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक था, 200 रन कोई कम नहीं होते हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है इस टीम के लिए। इस सत्र में उन्होंने 8वीं बार ऐसा हुआ है कि 200 रन का स्कोर जो है टांगा है, और इससे पहले और पिछले साल भी उन्होंने ये इस तरीके का कर दिखाया था। सिर्फ 2 ही टीमें हैं जो उनके बराबर ठहरती हैं, लेकिन इसका वो बचाव नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि तिलक वर्मा जिस अंदाज में खेले हैं, मात्र 33 गेंदों पर उन्होंने 75 रन बनाए, और ये उनका

0: पहला अर्धशतक है इस सत्र में 10 पारियों में, तो वो जिस तरीके से आड़े आ गए पंजाब के, वो कहा जा सकता। प्रभ सिमरन की बल्लेबाजी अच्छी थी, उनको दो कैच भी उनके ड्रॉप हुए और बहुत जल्दी जल्दी उनको जीवनदान ये मिले, लेकिन उसका वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, ये आप कह सकते हैं कि दो, अगर वो 57 रन से कहीं बड़ी पारी खेलने में सफल होते तो मुझे लगता है कि, और जिस तरीके से बीच में मैच थोड़ा सा गेंदबाजों ने अपने कब्जे में लिया, एक ये भी वजह हो सकती है कि बहुत अच्छा उनका औसत चल रहा था, वो 200 प्लस जा रहे थे, जा भी सकते थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट जिस अंदाज में लिए उससे मैच कहीं ना कहीं पंजाब के हाथ से निकलता तो नहीं। अब ये तो 200 रन तो पर्याप्त थे, फिसलता इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जब मुंबई इंडियंस खेल ली तिलक वर्मा की, वो इतनी बड़ी पारी आ गई, तो उसके बाद इसको माना जा सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, शार्दुल ठाकुर उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं पंजाब के, लेकिन अब यह है कि इनके लिए करु मरु की स्थिति तो जरूर है, लेकिन टीम बहुत ही मुझे लगता है कि एक हौसले के साथ खेल रही है, जरा भी अपने ऊपर कोई दबाव नहीं आने दे रहे, न खिलाड़ी न कोच न कप्तान, तो अगर उस हौसले के साथ ही उतरते हैं तो मुझे लगता है उसका लाभ इनको मिलेगा जरूर।
1: जी बिल्कुल, लाभ मिलेगा, लेकिन पंजाब की नजरें आज के मुकाबले पे होंगी, जो कि अगर चेन्नई जीतता है तो शायद इस सीजन में पहली बार पंजाब अपने आप को टॉप 4 के नीचे पाएगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर पड़ सकता है।
1: जी बिल्कुल, अब पंजाब चाहेगा कि यहां से कम कोई गलती को ना दोहराया जाए और वापस अपनी पुरानी
0: लय को। वही है कि उनके दो मैच बचे हैं तो उनको दोनों जीत रहे हैं, तो जी बिल्कुल उस अंदाज से उनको खेलना है कि अब ये दोनों ही मैच हमारे लिए क्रूशियल है, हमें जीतने करो या मरो शब्द मैंने इसीलिए उनके लिए इस्तेमाल किया।
1: जी बिल्कुल, अब करो या मरो के मुकाबले पंजाब को खेलने होंगे और जो शीर्ष 2 में पहुंचने की दौड़ थी उसको फिलहाल शीर्ष 4 तक बांधने की कोशिश होगी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामी को 21-12 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलाउत विदित्सन से 19-21 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को भी महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए खेलों में जो आज एकमात्र बुरी खबर रही वह यह रही कि लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु का अभियान थाईलैंड ओपन में आज समाप्त हो गया।
0: ये है कि मतलब क्वार्टर फाइनल तक देखिए आए, अब उससे आगे जाने की उम्मीद थी, लेकिन चूंकि दोनों ही मुकाबले बहुत कड़े प्रतिद्वंदियों के खिलाफ थे दोनों के, तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि और बेहतर हो सकता था, लेकिन आपका कमी रह गई। सिंधु भी लगातार अच्छा कर रही थी इस टूर्नामेंट में, लक्ष्य भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दोनों के जो सामने जो खिलाड़ी थे वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुए, तो वो मौका नहीं मिला उनको, लेकिन ले जाते अगर वो अपने अभियान को और आगे तो और ज्यादा बेहतर होता।
1: जी बिल्कुल सचिन, लेकिन भारत की इस ऑल टाइम फेवरेट जोड़ी पे क्या कहेंगे, जहां पे सात्विक और चिराग हैं हर कॉम्पिटिशन में भारत को कुछ देते हैं।
0: वो तो बहुत जबरदस्त खेल ही रहे हैं और उनके वजह से देखिए बहुत सफलताएं भी मिली हैं, और अब जब सिंगल्स में कुछ नहीं इस तरीके के कोई टाइटल आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि डबल्स में आए कम से कम, क्योंकि जो बैडमिंटन ने जो एक दिशा दिखाई थी जो खिलाड़ियों के लिए वो कहीं ना कहीं बरकरार रहनी चाहिए, अगर वो सिंगल्स में नहीं तो डबल्स में सही।
1: जी बिल्कुल, डबल्स में उम्मीदों के साथ कल ये टीम सेमीफाइनल खेलने उतरेगी और उम्मीद होगी कि उसको किताब में बदलने की कोशिश हो। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद सचिन।
0: धन्यवाद शक्ति।
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक

0: के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार

0: और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent.